सदा सुख मन वस दुख संसार है कुव गोर नाव निद दरियाऊ जन्म हम काल खतुव सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई

गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सीहुती उचारी, तनासरी ए पांचो गाई, माल राग कौ सक संग लाई, मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चांड कौ सक उभारा।

त्व प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गद हा विभूत दारिग दुआ मसान बास करो करत है खूकमट बस लग डोलत उदस मिग तरवर सदीव मन साधई मरत है बिंद के सदैया ताहे ही।

ठंड सद बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम फूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया वरागी बन का बहु संन्यास फेस बन के दिखावई। कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंड धारी होई के लोग न भ्रमावई। कामना दीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर उगदहा अनेक दा पुकार ही। कहा भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाक उठा रंसो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार।

अनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जप पाए तो जाप देव भूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनर आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गत रांड की परत कर।

इमाम साफी मानस की जात सब एक है पहचान वो करता करीम सुई रास करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानवो एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो देहुरा मसीत सोई पूजाओ निवाज होई मानस सब एक बयाने को भ्रमाओ है देवता देव जश कंदरब तुरक हिंदू न्यार न्यार देसन

आग देखो नु गगोड आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप दे अभूत भूत प्रकट होय, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मच केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नभ बीज अच पच को करेंगे भच, के तक प्रताच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जो तेज में अतेज, जैसे तेज रिन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत, केत जल में डुबत, केत आग में जरत है। केत गंग वासी, केत मति नामक का निवासी, केत उदासी के

अच्छे विभूते न जन्मंग न मरनंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाथे न नेहंग न गेहंग स नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे व्रचंडे वर्माथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सुभूते भविख्य भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग वेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग स देवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नीय छयाद अद्वयाजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न

न शोकं न सागं परे अंग पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्र नमो एक तंत्र नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साकेन न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं कंज के मज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के धर्म डूले, कहूं देश के वेश के धर्म धामे, कहूं राज के साज के बाज तामे, कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे, कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे, कहूं अंग के रंग के संग देखे, कहूं जंग के रंग

ग्रहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं होम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जश विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्नया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काप कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार्य चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के

अनुभूत भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगाद करता सदैव हरता सनातासन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नयक नेह गेह नहीं चहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगज जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पवन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र भच्छ नहीं तदप देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र

देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचंग सर्व मकीन मकान जेह राग न रूप न रेख रुखंग जेह ताप न साप न शोक सुखंग जेह रोग न सुख न भोग भुयंग जेह खेद न भेद न छेद छयंग जेह जात न पात न मात पितंग जेह रचयंग छत्री छत्र छितंग जेह राग न रेख न रोग भणंग जेह द्वैख न दाग न दुख गणंग जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रू बिंद नगिंद नगं श्रेय जाच गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंगीय देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न बात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न सोग न भोग भुयंग जेह जंपह किन्नर जच्छ जुवंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच्छ भुजंग दिए गज बाजर थातक पांत गण भवभूत भविख भवान तुवंग जेह अंडज से तज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बनी वन वमन जास कियो फल फूल कली वो मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय

जय राग न रंग न रेख रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आद सरंग जय वंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा।

संग है न मान है न मौद है न साक है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह गो कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न दात है न माद है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीध है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभ्रम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेग है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है।

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मै जय गाथ भूत भव भविख भवान प्रमाण देवगंज आद अंत अनाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अनकरण जित कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर।

काज ले तले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावई शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये दह पार नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल भिस्तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो

सिरक्ता सुरखंडन शुंभ जगरतन शुंभ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दाम निब्रहा से सुख सरना से सुब्र सुबा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आद नाद का दोर्धंग घंट का विराजे रुण झुण बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल विग भाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंदन रिज्जे सफे नभज्जे रोह रणंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज।

त्रियाण खतंगी अव अभंगी आद अनंगी अगाध गते वृड़ लाज बिहंडन चुर दंडन तेज चंडन आदि वृते सुर नर प्रतिपारण पद दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मास मर्दन विश्व विदुन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उमतन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रतर खण बितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्व गहिली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण सस चमकण दामिन दमकण आदवृते डुकडुकी दमंगे बाघ बपंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय उसी में खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चिछरा सुन मारण नरक निवारण पद दोधारे ए घोटे पापान विहंडन दुष्ट वचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद दोधारे मुंड मथे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दन दान मर्दन बिडाल मदे सरदार विमरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम दुजे धूमराज विधुंसन सुणत चुनसन सुंभन।

दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जेह जात पात नहीं भेद भ्रम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल अपार। जानी न जाय जेह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम दास है कवन जात से सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय जक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिज अदाग। जल धर्म हीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दी नान दोख दहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस

पशु नग नाग नराध सर्व समय सबको व्रत पार पोखत है जल में थल में बल में गल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन कादल दुजन के पल में दल डारे खंड खंड व चंड बहारण पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमापत वेद कते व भेद उछारे रोज ही राज विलोकत राजक रूख रुहान की रोजी नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंग वेवना भेव लख्यो भ्रम शिव ब्रह्माए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाध द्वेक्षो भूत भविक भवान अभय अंत विहीन अनात्मा अदोख अछिद्र अछह लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छ है जान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्हरी सुध सुंदर श्री पद्मापत।

हाक है तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जा छु जंग सो दानव देवा फेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जा छु जंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजी।

महारूप हूं क्या राशि है ना सिखे के मानी है। जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न मायता की पूर्ण ब्रह्मा की सो छटा के अन मानिए। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए। तेज हूं को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को बहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे विनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहिंदा है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भूगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के भूत हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है मही बन को मंड है के श्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार अवार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमाल गावे हब सिहल विद्या पूर बिना पार पावे असत्य अनाश है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवन अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूमि के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है धरैया ध्रुव चाल के। कामना के कर है के

बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्री के कूल के। हंसनी से सिहारुम ही राशि हुसैन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निक रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीर दत्ती हरी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाज कमाऊ गढ़ कांसी बुरसी सासी सुरंगाबाद नीके सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहा कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांदरगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बिरंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गाइयत है। भक्करी कंधारी गोर काखरी गर्दे जाचारी बौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप ओ कर्माऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र दे अतापि नाथ कीरत तिहारी को न पार पाइयत है।

करे, दीनन की प्रतपाल करे, नित संत उबार गनी मन गारे, पशु परे नगनाग नरातक सर्व समय सबको प्रतपारे।

0: आ रही आवाज। वाहेगुरु वाहेगुरु। हेलो स्पाइडरमैन, शक्तिमान। हेलो कहाँ बाबा जी, आते जो मैं मैम 10 मिनट है।
1: सुंदर आप
0: पागल
1: लगे
0: हुआ क्या? 9-10 को आ गए थे फिर। आ रही ना आवाज क्लियर? अभी चेक कर ले ये कैमरे का, चेक कर लो अभी, अभी कर लो अभी दिया ना, साइड बैलेंस होने चेक कर लो,
1: नहीं वो चालू करके सर, चालू करके रख दो उसको,
0: सेट करके रख लो, उधर के बाद में करने आता। हेलो सेट कर रहा थे कभी, वो दूसरा कैमरा बाद में लगाएंगे उन्हें, ये कैमरा वो लगा करके करने आता है। ओके ना ले वाले
1: कर लिया था पहले से।
0: नहीं ना, आप कहाँ आ रहे हैं?
1: मैं करेक्ट
0: अब आ रहा, थोड़ा टोन आ रहा है देख लो अब। ठीक है हाँ, ये वायर वाला है, उधर वायरलेस लगा दो सामने, हाँ बाद में देखते रहे, अभी रख दे रहे हैं। और ये बाद में चेक करेंगे।

0: करके वहां सेंटर में लगा देता हूँ।
1: हेलो, आ रही ना राम सिंह हो जाए और क्या अपने। हाँ हाँ
0: एक गोलक के पास सेंटर में लगाने।
2: हाँ हाँ अभी नहीं, चौकी हो जाए तो बाद में लगाएंगे, पहले शुरू कर दिए बाद में लगाएंगे। ठीक है
1: थोड़ा माता जी कौन है
3: Thank you.

पांडवा मनवा चित्वा चित्वनी उद्यम करो ठनीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत पवणी रण दिन स्वरवा तुआई गावना जिय जंत सरबत नाव तेरा त्यावना तू दाता दातार तेरा दिता खावना भगत जना का संग पाप गवावना जन नानक सद बलहारा बल बल जावना जन नानक सद बलहारा बल बल जावना वाहिगुरु जी कीर्तन सोहेला सोहेला राग गवड़ी दीप की महला पहला एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जागर कीर्त आखिया करते का होए विचार तिदगर गावो सोहेला शिव रहो सृजन हारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हमारी जित सोहेला सदा सुख होए रहा नित नित जेड़े समालियन देखांगा देवन हार तेरे दाना कीमत ना पवैत दाते कौन सुमार संबत साहा लिखया मिल कर पावो तेला देहो सजन आसी सड़िया जिहो वैसा सिउ मेल कर कर एहो पाम चा सदड़े नित पवन सदना रस मरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छह घर छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको बेस नेक बाबा जागर करते कीरत होए सोगर राख वडाई तोयरा विशे चसिया घड़िया पहरा तिथी वारी माह होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेस राग तना श्री महला पहला गगन मै थाल राव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूपमल आन लो पावन चौरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति पैसी आरती हो पौखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रा सहस्तव नान नान नान तोह का सहस मूरत नना एक तोही सहस पद विमल नान एक पद गंध बिन सहस्तव गंध

राग गावड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर पापरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लियो मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पन वडाए कर डंडात।

अर्जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पाखंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वासुदेव खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन ब्रह्म तेरे हर राख राख बड़ बड़।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत लजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवसरा दुविधा ईदा आखेला सकल जगत।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख जल केती छुटी नाल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुख पाक पातशाही दसवीं छपा छंद ता प्रसाद चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात नहंद। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह, अचल मूर्तन वा प्रकाशन तोज कह जाय। कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गण जाय, त्रैपाण महीप सुर नर असुर नेत नेत मंत्रण कहत। तो सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत प्रिंद प्रयात छंद। नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तल निवासे। निरकामक विभूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मक प्रणासी सतर्मक विभूते। सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी। अजाय विभूते गजायब गनी में, हरियं करियं करीमल रही में। चात्र चक्रवर्ती चात्र चक्र प्रभुते, सांबो सर्वदास दुकालं प्रणासी दालं सर्वते। सदानंद संग

जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का जुआ। इतना हुक्म संभाल, इतना हुक्म

तब जगत संध में जाए हो मैं कुमार पैकृत पिरा हो मैं धीरे रोगे दारु बिस्मा कृपा के जो अपनी नगर का सुध कमा नामत है सुनो जनों एक संजम दुख

अंजरेत गाने पाए परम प्रदार गाने निचे वाजे वावे रूप कृष्णा उच्चे कुके वादा गावे जोदा का उच्चा मूर्ख पंडित हिकमत जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार जति सदावे जो कितना जाने छट पै करवा सबको पूरा पे होए कटना कोई आके पत परवाना पिछे पाई है तानानक तो दिया जापे मोहल्ला पहला वदिसो जग नानका सच्चा विकेसो सबनी चाला मारिया करता क्रिसो होई अगे जातना जोरे अगे जीवन वे

जुज में जो चली चंद्रावन कान कृष्ण जादन पे आपा जात को पिले आया बिंद्रावन बेरन किया कल में बेदा त्रपड़वाना पदाया लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रपाणी अमन किया चार

जगत का साई नील वस्त्र पैर हो प्रवान मन स्थान दे पूजे प्रा आप आख्या कुटा बकरा खाना चौके से न जाने देखे चौका कड्डी कार उपराए बैठे कुड़िया मत पिटे

खना परतरे पतन कने सुत कन पहला द्वार काए नानक हंसा जी लगे जन पूजा मोहल्ला पहला सबो सुत परम है जल के जाए जमन मना।

पहला पैलेस फर्स्ट च बैठा सच्चा के रखिया कोई ना पिटियो जाए सच्चा के जीवा लगा पड़ंसल कहती जाए सच्चा किसो लगा दुख अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लैण पंजवा पाया किरत ताहवा पाक पवित्र पापी शिव तन गड़िया थुका पिया देते

जिन पर अंदर बाहर कुदरते पले संसार तिमने हो नकार अब सिद्ध देख ले विचार रंग हसे रंग रोए चुप भी कर जाए परवाह ना है किसे केरी बस चैना।